0: है
1: Leica Radio.
0: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
0: High appreciation.
2: In Dubai.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर.
1: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Location, location, location.
1: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Danyo, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: Abhira, yahan se mera rasta bahut mushkil hone wala hai. Kya tum mere saath? Ye faisla mera tha. Bhugat tum rahi ho. Main kuch nahi kar pa raha hu. Kuch nahi kar pa raha hu.
3: अगर हम साथ हैं
2: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
4: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
5: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ई 392 एंड टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
6: साउंडिंग गुड थ्रू आउट द नाइट.

0: ये है लाइका रेडियो, भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड। CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Laika रेडियो।
2: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल, मिलिए अनुपमा से।
3: अनुपमा मंडे टू संडे एट 8:30 PM ओनली ऑन उत्सव प्लस। उत्सव प्लस स्काई चैनल 704।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
3: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HeartyHanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HeartyHanks.com now.
4: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., like a gold and like a radium Midlands.

0: on to Leica Gold 2. Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2. Gold 2.
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a radio.
0: Traffic and travel.
3: I'm Greg Edwards. On the A42 northbound, an accident's causing delays between Junction 14 at Castle Donington and the M1 interchange at Tamworth. And meanwhile, on the M6, the northbound side is still closed for investigation work between the M1 Catthorpe interchange and Junction 1 at Lutterworth. Lots of heavy and slow traffic on the surrounding routes, particularly the A426. It's slow on the A14 on the westbound approach to the M1 interchange as well. On the M6 southbound, there's an obstruction causing delays around Junction 5 at Castle Bromwich. It looks like the carriageway remains partially blocked. That's your latest traffic and travel.
4: Like a radio.
5: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ
6: शात्रों से हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए
5: जो कभी दिल से जुड़े थे आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है
6: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू
5: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे
7: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता
5: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707 Sky Glass 714 Virgin Media 809 BT 394 एंड Z5 एप
8: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
9: जेज एंटरटेनमेंट लेने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
8: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सकना रे जो हस्बैंड जी

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. Miss your favorite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at laikaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Laika Radio Midlands when you want. Laika Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Laika Group, home of Laika Radio and Laika Gold.
1: Laika Radio.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
0: This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network. Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at laikagold.com. Back-to-back hits across the Laika Radio Network.

0: Riker Radio.
1: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
2: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
1: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
3: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
4: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
5: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, व्हेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन, एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स। प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन। वेस्टर्न यूनियन इज ऑल्सो अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेज, यूरो चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस। डाउनलोड आवर ऐप टुडे और विजिट westernunion.com। दिस ईद सेंड मोर देन मनी, सेंड जॉय। Western Union makes money from currency exchange.
6: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
6: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167225. We're at all protected.

0: नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई, बता देना चाहिए। देखिए मैंने कई लड़कियों से ऐसे पूछा है नाम, कुछ बहाने बना बना के कई बार तो ये कहा कि लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, आपका नाम वाई। तो उनका पहला सवाल था, व्हाई यू वांट टू नो माय नेम। मैडम गुस्सा क्यों कर रही है? बस वैसे ही मैं तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहा था भाई। ऐसे गीत जिस प्रोग्राम में शामिल होना समझ लेना चाहिए, ये शरारतें करने की इजाजत मुझे ही है। और बहन भाइयों, मुझे यकीन है कि जब जब मैं नहीं आ पाता हूँ किसी कारण से, थोड़ा बहुत तो मिस जरूर करते होंगे आप। लेकिन भाई रितु शर्मा हैं, सरिता जी हैं, और भी कई लोग ऐसे हैं जो याद करने के लिए फुर्सत नहीं देते होंगे आपको, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करके मेरी जगह भर देते हैं। थैंक यू वेरी मच रितु, तो आपके कारण भाई मुझे छुट्टी मिल जाती है। लेकिन बहन भाई छुट्टी लेना नहीं चाहता हूं, छुट्टी लेनी पड़ जाती है कई बार। एक तो भाई इतनी दूर का सफर तय करके यहां आने के लिए ऐसा लगता है जैसे समंदर पार करके आया हूं, हाँ, वो लंबी यात्रा करके। और इसके बाद भैया पहुंच करके प्रोग्राम करके घर वापस पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, तो यात्रा में ज्यादा थकावट होती है, कार्यक्रम में इतनी नहीं होती। खैर साहब पहुंच गए हैं, कल का दिन कैसा गुजरा आपका संडे का? भाई एक दिन तो मेरा सही बताऊं आपको बुखार ने ले लिया, ये हो जाता है कभी कभी। अब आप ये मत कहिएगा कि उम्र के कारण ऐसा होता रहता है। तो उम्र क्या है भाई? उम्र तो कहते हैं, किसी ने कहा था एक संख्या होती है, इट्स जस्ट ए नंबर। लेकिन भाई कभी कभी जो है ना इतनी परेशानी बढ़ती है तो फिर छुट्टी लेनी पड़ जाती है। और कभी कभी कोई काम पड़ जाता है, कभी रेलों की स्ट्राइक, कभी सिग्नल फेल, तो कई रुकावटें होती हैं। उन सबको पार करके आपसे मिलने के लिए मैं
1: तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के वहां बहाने।
0: भाई फिर भी आना है, आपसे मिलना है और साथ चलना है। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, आपको साथ निभाना होगा। मेरी आवाज सुनकर रुकना होगा, साथ लेना होगा मुझे। कभी कभी भाई पीछे छूट भी जाऊं तो साथ लीजिएगा। सो माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। इफ यू हैव जस्ट जॉइन मी, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं आपको कि भाई अगर आपको पैसे भिजवाने हैं भारत, तो सही समय है, अच्छा रेट है, मौके का फायदा उठाइए। योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कुड गेट यू मैक्सिमम 127.45 रुपीस। 127.45 रुपए का रेट चल रहा है। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी into win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. TNC apply. Terms and condition. भाई तो ये एक सूचना उनके साथ, तो इन दिनों में पैसे भेजना डबल फायदा करवाता, रेट अच्छा चल रहा है, साथ में ये जुड़ी हुई है ऑफर्स भी, इनाम भी।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: पैसों की बात करें तो साहब पैसों की बरसात तो कल हो रही थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया टाटा IPL 2026 का, और साहब जीतने वाली टीम 20 करोड़ रुपए टीम को, और उसके बाद भाई करोड़ करोड़ तो पता नहीं कितनों ने बटोरे, लाखों में कितनों ने बटोरे। और सोचने वाली बात यह है कि एक एक खिलाड़ी को, खिलाड़ियों को छोड़िए साहब, वो जो ग्राउंडमैन है उसको भी, जो एम्पायर है उनको भी, वहां तो इतना पैसा बट रहा था। मैं सोच रहा था मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के क्या कर रहा हूँ। हाँ सही बात है ना, मुझे तो ग्राउंड में होना चाहिए। वहाँ भाई वो रोलर भी फिराओ तो उसके भी जो है इनाम मिलता है कि बेस्ट पिच के लिए, बेस्ट ग्राउंड के लिए। लेकिन साहब कल का मैच याद रहेगा और याद रहेगी विराट कोहली की वो पारी, 75 नॉट आउट। जब विजेता टीम के कप्तान रजत पाटीदार, हाँ बेंगलुरु की कैप्टन जो है रजत पाटीदार, वो ट्रॉफी उठा रहे थे, तो हमें लगा भाई आप क्यों उठा रहे हैं, ये तो विराट कोहली के नाम की है। तब विराट कोहली जो है गजब प्लेयर और अब भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये अभी और सफर तय करेंगे क्रिकेट जगत में। लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ के भाई बहुत ज्यादा पैसे जिसने बटोरे, इनाम बटोरे, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन भाई वैभव से उसके बारे में बात करेंगे आगे चल करके। अभी 15 साल का हुआ है, अभी हुआ ही है, और 15 साल का ये बच्चा तूफान मचा रखा उसने। पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये खराब हो रहा है क्या है? अगर खेलते कूदते नहीं तो सचिन तेंदुलकर भाई कहां से आता? मैं तो सोचता हूं मैंने पढ़ाई लिखाई करके अपना टाइम वेस्ट किया है। सही बात है, मैं क्या काम आ रही है डिग्रियां बताओ, डबल एमए करके भी है? लेकिन बताऊं आपको कि जो खेला कूदा या जो थिएटर किया, जो मंच पर समय बिताया, जो संगीतकारों के गायक कलाकारों के साथ समय गुजरा, जो ऑर्केस्ट्रा चलाया, जो वो सब काम आ रहे हैं, और भाई कुछ धार्मिक रीति रिवाजों में दिलचस्पी थी वो भी सब काम आ रही है। आगे चलकर बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के बारे में, अभी तो भाई कुछ संदेश आप तक पहुंचा दें।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro chain and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
2: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
6: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
2: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
6: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
2: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil
6: on Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
2: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner Leica Radio.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no lab. A pavitra yatra ma jodao apna parivar sathe. Jya madshe shanti, bhakti ane anand. Ane sathe Eiffel Tower, Seine River Cruise ane Paris City Tour no anand mano. Departure 5 September. Mantra Holidays. Call karo 0203-773-6333. Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: वाला सॉन्ग, रफी साहब की आवाज और रवि साहब का संगीत, एंड द नेम ऑफ द फिल्म वाज नई रोशनी। और भाई ऐसे ऐसे गीत जो है कभी पुराने नहीं।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a radio.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास समाचार सुनिए। यहाँ ब्रिटेन में एक बात बड़ी चर्चा में है भाई, एक इंजेक्शन जो इतना घातक हो सकता है उसके लिए एक महिला फाइजर कंपनी को सू कर रही है। एक अकेली नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ वुमन हु टुक द कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन कॉल्ड डीपो प्रोवेरा आर सुइंग द फार्मास्यूटिकल कंपनी बिकॉज ऑफ दे आर सफरिंग ऑफ सीरियस हेल्थ इश्यूज। चर्चा में है काफी। और एक खबर ये है कि भाई मौसम की जो गर्मी है उसने अब तक 17 लोगों की जान ले ली है। तैराक बनकर भाई पानी में उतरे और फिर लौटे नहीं, तो लोगों को सावधान किया जा रहा है कि भाई अतिरिक्त जो है एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। इसके अलावा भाई सब कॉन्टिनेंट से जो खबरें आ रही हैं उनमें कॉकरोच पार्टी, सुना आपने कॉकरोच जनता पार्टी? ये एक खबर है, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप 6 जून को भारत जा रहे हैं। अभी वो भारत से बाहर हैं, तो भाई वो फाउंडर हैं और अभिजीत दीप के उनका नाम है। उन्होंने आज कहा है कि वो 6 जून को भारत जाएंगे और दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध शुरू करेंगे। भाई ये पार्टी अभी उन्होंने बनाई और इतनी पॉपुलर हो गई है, वो कॉकरोच शब्द का इसमें एक लंबी व्याख्या चाहिए विस्तार से बताने के लिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ कहा कॉकरोच के बारे में और इन्होंने ये शब्द पकड़ के उसके नाम से पार्टी बनाई और फिर सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया। एक वीडियो में दीपक ने अपने हिमायतियों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध में शामिल होने की अपील की है। 6 जून को वे वहां पहुंचेंगे। पश्चिमी बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बीजेपी के 35 एमएलए यानी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। पश्चिमी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। आज पार्टी के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें से 13 ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली, कैबिनेट पद की, और बाकी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्य में मंत्रियों की संख्या अब 41 हो गई है। बड़ा राज्य है बंगाल। और भाई आपको बता दें कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को हरा करके ये शुभेंदु अधिकारी जो हैं ये बीजेपी के नेता के रूप में चुने गए और ये मुख्यमंत्री बने हैं। अब इनकी सरकार का विस्तार हुआ है। इंटरनेशनल खबरों में राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस्तीफे का दावा करने वाली खबरों पर अब टिप्पणी आ रही है। ईरान के कई सरकारी अधिकारियों ने प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबर को अफवाह बताया, झूठ बताया है। सरकारी स्पोक्स पर्सन फातिमा मोहजरानी, इलियास हजराती और अली अहमदनिया राष्ट्रपति पेजेश्कियान के सरकारी सूचना परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है। इन्होंने अलग अलग पोस्ट में राष्ट्रपति के काम जारी रहने और देश की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिशों का जिक्र किया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात टाइटंस रनर अप रहे हैं। दोनों ही टीमों को प्राइज मनी दिया गया। चैंपियन बनने पर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ट्रॉफी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी मिला है, जबकि रनर अप रही टीम गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को कुल मिलाकर 5 अवार्ड मिले। वैभव ने सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का टाइटल जीता है। उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स, मोस्ट 6 अवार्ड और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन समेत कुल 5 अवार्ड जीते। अमेरिका ने सीज फायर के बीच ईरान के राडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी है कि हफ्ते के आखिर में ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड में ईरानी राडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर आत्मरक्षा में यानी सेल्फ डिफेंस में हमला किया गया। इन हमलों को सेंटकॉम ने जवाबी कार्रवाई करार दिया है। दरअसल इससे पहले ईरान ने यूएस MQ-1 ड्रोन को गिरा दिया था। ईरान ने दावा किया था कि ये ड्रोन उनके समुद्री इलाके में था। मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, अब तक तो किया जा चुका होगा। मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर कल संडे की शाम को मुंबई में 89 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी एक करीबी दोस्त ने बताया कि उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण सुमन कल्याणपुर की मृत्यु हुई। सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पवन हंस शमशान घाट पर आज सुबह लगभग वहां के समय के अनुसार 11:30 बजे हो गया है। कल्याणपुर ने 1960 और 1970 के दशक में अपनी आवाज से लोकप्रियता हासिल की। वे पद्म भूषण से भी सम्मानित हुई थीं। कल्याणपुर ने कई मशहूर गाने गाए, इनमें से एक दो हम आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भारत में कमर्शियल LPG सिलेंडर और महंगा हुआ है। अब उसकी कीमत में बढ़ोतरी के बाद आज से ही हो गया है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनर कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 42 रुपए बढ़ा दी है। और एक खबर अभी भी आ रही है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से। म्यांमार में कल संडे को हुए एक भीषण धमाके में 55 लोगों की जान चली गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। उस इलाके में हुई है ये दुर्घटना जो विद्रोहियों के कब्जे में है। शान राज्य में नामखाम टाउनशिप में हुई इस घटना के बारे में एक सोर्स ने बताया है कि 25 महिलाएं और 30 पुरुष मारे गए हैं। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस इलाके पर कंट्रोल रखने वाले ग्रुप और सेना के खिलाफ लड़ रहे टोंग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि खदान और पत्थर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक फट गए, इस कारण ये हादसा हुआ है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: लौट आइए अब संगीत की ओर और सुनिए कंठ कोकिला लता मंगेशकर की आवाज। गुड मॉर्निंग।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Holiday breaks are brought to you by South Hill Travel.
2: और साउथ हिल ट्रेवल्स का पैगाम आपके नाम है, साउथ हॉल ट्रेवल याद दिला रहे हैं, मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन. ट्रस्टेड ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल 0208574 8410.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हो गए हैं और बहना भाइयों, मनोरंजन कार्यक्रम में ये पड़ाव चिंतन के लिए है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं वुल्वरहैम्पटन से श्रीमती गीता शर्मा का भेजा आलेख। गीता जी बिल्कुल गीता के संदेश की तरह एक पैगाम भिजवा रही हैं, एक छोटे से प्रसंग के साथ। आइए सुनते हैं आज का विचार, आज का चिंतन।

लाखों मन है जमा जखीरा, पर किस्मत में दो रोटी है। जिसके पास करोड़ों है वो भी दो रोटी से ज्यादा तो नहीं खाता होगा, वो हमसे कम ही सोता होगा, कम ही खाता होगा और कम ही खुश रह पाता होगा। एक सूफी फकीर वाजिद हज यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में जमाने की बात है, पुराने जमाने की, जब सस्ता जमाना था, उसने अपनी पॉकेट में एक पैसा रख लिया एक दिन के भोजन के लिए। ये देखकर उसके एक धनपति दोस्त ने कहा, पैसे वाला

था उनका दोस्त कहने लगा, अबे ये क्या कर रहे हो भाई, ये लो थैली, इसमें बहुत सारी अशर्फियां हैं, ये रख लो। वाजिद ने कहा, देखो वैसे तो एक दिन के लिए भोजन के लिए मैंने पैसा रख लिया है, अब तुम्हारी अशर्फियां भी रख लूंगा तो ये पहले गारंटी दो कि मैं अगले दिन तक जिंदा रहूंगा। भाई जब कल का भरोसा नहीं है तो कल के लिए पैसे संभाल के क्यों रखूं, आज के लिए मेरे पास काफी है ये। इस पर दोस्त ने हंस के कहा, देखो भाई बात तो ठीक है आपकी, लेकिन ये तो उसके अख्तियार की बात है। जीवन मरण तो उसके हाथ में है, ऊपर वाले के। इस पर वाजिद ने कहा कि वो एक पैसा आज के लिए काफी है, वही रखेगा, कल का भरोसा ही नहीं तो कल का इंतजाम क्यों। ये बात पास में बैठा एक फकीर सुन रहा था और संत वाजिद की बात सुनकर वो हंसने लगा, जोर जोर से हंस रहा था तो उसके संत वाजिद ने और उसके दोस्त ने भी पूछा, भाई हंस क्यों रहे हो, क्या बात है। कहने लगा, जब एक दिन का भरोसा नहीं, अगले दिन का भरोसा नहीं है तो आज का भी भरोसा कैसे है। जब एक पैसा रख सकते हो तो 1 करोड़ भी रख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। सुनकर के वाजिद का तो दिमाग घूम गया, उसने उसी वसा में अपनी पॉकेट से वह पैसा निकाला और फेंक दिया, किसी और के काम आएगा, मुझे नहीं चाहिए, आज पेट भरा हुआ है, अपने आप देगा वो। वो पैसा वहीं गिरा करके आगे बढ़ गया और कहते हैं कि उस पैसे के त्याग के साथ ही संत वाजिद को ज्ञान प्राप्त हुआ। जितने लंबे दावे तेरे, उम्र भी उतनी छोटी है, लाखों मन है जमा जखीरा, पर किस्मत में 2 रोटी है, उससे ज्यादा जमा करते रहो, वो किसी और के ही काम आएगा, कोई और ही खाएगा। भाई ये विचार करने की बात है और विचार का नाम ही है चिंतन।

पर ये ना कभी विचारा कि मनुष्य जन्म दोबारा, ये तुझको क्या मालूम है कि पाएगा कि ना। और ये जो चलता है सांस फुहारा और अगला सांस दोबारा, ये तुझको क्या मालूम है कि आएगा कि ना।

0: What a song and what a fact she was saying. But नूर जहां की आवाज में ये गीत हमने आज के चिंतन के साथ शामिल किया और मुझे यकीन है कि एक अरसे बाद इसे सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
1: चिंतन चिंतन
0: की दमदा परोसा यार दम आवे ना आवे, ये जो चलता है सांस फवारा और अगला सांस दोबारा, ये तुझको क्या मालूम है कि आएगा कि ना। जितने लंबे दावे तेरे उम्र भी उतनी छोटी है, लाखों मन है जमा जखीरा पर किस्मत में दो रोटी है और उस पर भी नहीं कोई चारा। जब काल का हुआ इशारा तो टूटा हुआ ग्रास भी तो खाएगा के ना। शब्दावली नथा सिंह निर्दोष जी की, और भाई ये गीत और आज का संदेश, आज के चिंतन में हमने जो आलेख शामिल किया वो हमें भेजा था वुल्वरहैम्पटन से श्रीमती गीता शर्मा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। और बहन भाइयों याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, भारत पैसे भिजवाने हैं तो अवसर भी है, रेट भी अच्छा और मौका तो है ही, साथ में कुछ ऑफर्स भी हैं। सुनिए आज का रेट, £1 इन योर पॉकेट कुड गेट यू मैक्सिमम हाउ मच, भाई अधिकतम आपको दिला सकता है ₹127.45, 127.45 रुपीज। और भाई जून के महीने में भिजवाने का कुछ एक्स्ट्रा फायदा, सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, आल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ $24.99,
3: हमजा समोसास 3 for $10,
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
3: सुहाना मसालास 2 for $150, रामदेव नमकीन 2 for $149,
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
3: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE5 for UN.
3: While stocks last.
5: Tumhein dil lagi.
2: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
6: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
2: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
6: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
2: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
6: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
2: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June. June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA. Citibond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citibond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
3: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
4: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
2: अरे कहाँ हो तुम?
3: हो आलो आलो।
4: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
5: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
6: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
7: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
8: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
9: Leica Radio.
8: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
7: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
10: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: और साहब रफी साहब के साथ ही आवाज किसकी थी भाई? पहला गीत हमने सुनवाया जा रे जाओ हर जाई लता मंगेशकर जी की आवाज में था, और उसके बाद ये गीत सुनवाया। दोनों सिमिलर आवाजें, दोनों एक जैसी, कभी कभी पहचानना भी मुश्किल हो जाता था। रेडियो में आने के बाद थोड़ा सा भाई फर्क महसूस होने लगा हमें, वरना इनकी आवाज को भी हम लता जी की आवाज समझते थे। और भाई ये आवाज थी स्वर्गीय सुमन कल्याणपुर की। अब भाई उनके नाम के आगे स्वर्गीय लग गया है लेट सुमन कल्याणपुर, क्योंकि कल उनका निधन हो गया। और भाई सुमन जी के बारे में वैसे आपको बता दें कि इनका जन्म 28 जनवरी 1937 में हुआ था। सुमन हेमानी इनका नाम था, और भाई ढाका में हुआ था जन्म। ब्रिटिश इंडिया उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, ये भारत का ही हिस्सा था, वो हिस्सा भी, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। और उनके पिताश्री जो है वो शंकर राव हिमारी, तो वह वो सारस्वत ब्राह्मण थे, तो ये एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी। और साहब संगीत साधना इनकी आवाज में साफ मुखर होती थी, दिखाई पड़ती थी। वैसे इन्होंने भाई कई जगह से ट्रेनिंग भी ली, सीखा भी, गाया भी, और छाया भी इनका एक गाया हुआ गीत। आज कम से कम एक दो गीत और हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे श्रद्धांजलि स्वरूप। आपको बता दें कि कल सुमन जी का दुखद निधन हो गया। कल 31 मई 2026 को 89 बरस की आयु में मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। स्वर्गीय सुमन कल्याणपुर, स्वर जिंदा रहता है, स्वर ईश्वर है, आपकी आवाज कायम रहेगी और हमारे कार्यक्रमों की शोभा बनती रहेगी। आपको भावभीनी श्रद्धांजलि इस गीत के रूप में। ये गीत था फिल्म जब जब फूल खिले से, रफी साहब के साथ ये गीत उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गाया। और भी भाई कुछ एक गीत जरूर आज शामिल रहेंगे श्रद्धांजलि स्वरूप स्वर्गीय सुमन कल्याणपुर।
1: ये है लाइका रेडियो फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कम नहीं हो। मेरा दिल लुट कर भी तुम्हारा नाम लेगा, और भाई मेरा दिल आपका नाम लेगा। मानसी जी थैंक यू वेरी मच, और आप हैं कंचन अग्निहोत्री जी, आपको दुख हुआ है सुनकर के, बहुत लोगों को दुख हुआ है सुमन जी के जाने का। एक ऐसी आवाज, यादगार आवाज, गायक कलाकारों की श्रेणी में बहुत उत्तम स्वर था उनका, हम याद करेंगे उन्हें। विजय जी मॉरिशस में और विजय सटन में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नैना शाह जी थैंक यू वेरी मच, कहती है सुमन कल्याणपुर के विषय में जान करके दुख हुआ है। एजाज चेशम में सुन रहे हैं हमें, नीलम ऑस्ट्रेलिया में सुन रही हैं। शोभना राय जी थैंक यू वेरी मच, सहर जगदीश जी बुशी में, सुनीता शर्मा और अर्जुन जी, अरुणा और भूपेंद्र पटेल, निर्मला और महेंद्र पटेल क्रॉयडन में सुन रहे हैं, पम्मी सिंह स्लाव में हैं हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और वियाना में हैं हमारे अनिल सोनी साहब, भाई रेगुलरली सुनते हैं, जुड़े रहते हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद रागनी का भी, आप सबके नाम किया हमने ये गीत, स्वीकार कीजिए। और गीत सुनवा रहे थे Feel Good Track,
1: brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: याद दिला दें आपको लाइका एक्स्ट्रा, हमारे यहाँ भाई लाइका एक्स्ट्रा पर अब नया एपिसोड उपलब्ध है, पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 18, टाइटल है मोनोपॉज, और होस्टेड बाय रूबी रजा। और आपको बता दें कि भाई हमारे पुराने जो एपिसोड्स हैं वो भी अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app, or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: This Eid ul Adha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
2: Cardiff, get ready for the taste of Mumbai.
3: SKVP opens from the 30th of May at 111 Queen Street, Cardiff, bringing authentic Indian street food and big flavour to the heart of the city. From your favourite Mumbai-style bites to Sahana products, find it all at SKVP Cardiff. Visit SKVP 111 Queen Street, Cardiff.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
6: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
5: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया,
6: दिल तो टूट भी गया,
5: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
7: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
5: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
8: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
9: Abhira, yahan se mera rasta bahut mushkil hone wala hai. Kya tum mere saath
10: jaoge?
9: Ye faisla mera tha, bhugat tum rahi ho. Main kuch nahi kar pa raha hu, kuch nahi kar pa raha hu.
7: अगर हम साथ हैं
9: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
11: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
12: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ई 392, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स।
4: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 AM and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.
13: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Spring into the sunshine on Leica Radio Network.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

सुमन कल्याणपुर जी की आवाज और साथ में रफी साहब का स्वर। ये गीत हमें 12 बजे की खबरों तक ले जाएगा और खबरों के उस पार रवि शर्मा आपका इंतजार करता हुआ यहीं पाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में श्रोताओं का स्वागत है, और स्वागत है एक ऐसी आवाज से, कुछ हटके है पर भाई गायक कलाकारों के मैदान में बड़ी डटके है, वन एंड ओनली यशुदास।

0: हमसे दूर कभी जइयो ना भाई, ये वादा तो हमें आपसे चाहिए। अपने रेडियो को अपने पास रखिए, बल्कि अपनी पॉकेट में रखिए, दिल के करीब। छोटा सा कोई ट्रांजिस्टर होया भाई, अपने फोन के ऊपर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर रवि शर्मा आपकी पॉकेट में ऑल द टाइम। दो गीत बैक टू बैक हमने आपको परोसे और मुझे यकीन है कि आपने स्वीकार किए, आपको पसंद आए होंगे। ये कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम दौर है। 12:15 चाहते हैं, याद दिला दूं आपको कि मेरी और आपकी ये मुलाकात दोपहर बाद 1 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद होंगे बाली ब्रह्म भट्ट आपकी मेजबान। तो साहब लीजिए, एक बार फिर से नोट कीजिए, SBI का ये संदेश, पैसे अगर भारत भिजवाना चाहते हैं तो क्या ऑफर कर रहे हैं वो?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफरिंग, फॉर £1 यू कैन गेट मैक्सिमम 127.45 रुपीज, 127 रुपए और 45 पैसे का रेट इस समय चल रहा है। और वो कहते हैं कि भाई अगर आप जून के महीने में भिजवाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फायदा उठाएंगे। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, ये भी याद रखिएगा। ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। शर्तें लागू, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। लाइका रेडियो।
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 2 for 5, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
2: Last,
4: are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
9: Oh, Julelal Kalandar, mast, mast, dam, mast, kalandar, mast.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
3: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
2: जेमिन्स फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: Listen back to your favorite shows by logging on to LykaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Lyka Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Lyka Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know that Lyka Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favorite presenters live. Get the tune in details at LykaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Lyka Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
5: और भाइयों भाइयों, इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है एक नए आर्टिस्ट ऑफ द वीक के साथ। और इस सप्ताह के कलाकार का नाम है, राइटर है, लिरिसिस्ट, गीतकार, नाम है उनका श्यामलाल बाबू राय। इस नाम का कोई गीतकार याद आ रहा है? अरे नहीं भाई, ये गीतकार भी अपना नाम बदल लेते हैं और भाई जो जिस नाम से मशहूर होते हैं तो वो नाम इनका पहचाना हो जाता है, जाना पहचाना होता है। तो श्यामलाल बाबू राय नाम से तो आप उन्हें नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई इस सप्ताह के गीतकार का नाम है स्वर्गीय इंदीवर, क्या गाने लिखे हैं साहब उन्होंने। कल सुमन कल्याणपुर जी का निधन हो गया, उनके होठों पर सजा था इंदीवर का लिखा ये गीत। झांसी में पैदा हुए थे श्यामलाल बाबू राय।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने गीत सुना, इंदिवर का लिखा हुआ। इंदिवर हैं इस सप्ताह के कलाकार, और अब सुनिए मन्ना डे का स्वर। दिल की बात सुना रहे हैं।

0: का हल सुना आपने, मन्ना डे की आवाज में, एंड दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म, भाई वो पुरानी फिल्म श्री 420 याद होगी आपको, 1958 में आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन साहब उस पूरी कहानी बड़ी कलरफुल थी उसकी, एंड दैट वाज ब्रॉट टू यू बाय
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और साहब कुछ एक जानकारियां आपके साथ साझा करनी है, आपको याद दिलाना है कि भाई एक तो लेजेंडरी गायक कलाकार हरिहरन तशरीफ ला रहे हैं. हाँ, हरिहरन आ रहे हैं सोल इंडिया कार्यक्रम लेकर के रॉयल फेस्टिवल हॉल में, उनकी परफॉर्मेंस है. और कब है ये नोट कर लीजिए, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में सैटरडे 4 जुलाई को. टिकट्स एट southbankcentre.co.uk एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. इसके अलावा भाई लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड पार्टनरशिप विद प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागा सन. डिटेल्स एट लाइका रेडियो डॉट कॉम.
1: ये है लाइका रेडियो.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

लौट आई एक बार फिर से संगीत जगत में। भाई किशोर कुमार का स्वर प्रोग्राम में शामिल हुआ कि नहीं इस घंटे में, लीजिए पेश है।

0: जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। और बहन भाइयों, कल ये आवाज खामोश हो गई मुंबई में, सुमन कल्याणपुर रफी साहब के साथ गा रही थी ये गीत, और इस गीत में जो शब्द आए, मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है, हमेशा याद आएंगी। सुमन कल्याणपुर भाई अपने गीतों के माध्यम से लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में अपना घर बनाएंगे। सुमन हेमादी 28 जनवरी 1937 में ढाका में उनका जन्म हुआ, और 31 मई कल संडे की शाम 89 बरस की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। जाने वालों की याद आती है और आएगी।
1: दिल एक मंदिर है,
0: सुमन कल्याणपुर की सदाबहार आवाज गूंजती रहेगी, याद दिलाएगी उनकी। अक्सर उनकी आवाज को लता जी की आवाज से भाई मैच किया जाता था, कई बार लोग धोखा खा जाते थे कि ये लता जी की आवाज है या सुमन जी की। ऑफन मिस्टेकन टू बी दैट ऑफ लता मंगेशकर ड्यू टू देयर सिमिलर टोन एंड टेक्सचर। सुमन कल्याणपुर का कैरियर जो है 1954 से शुरू हुआ और भाई 1970 तक तो चरम पर रहा। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद दिला दूं आपको कि भाई बाली भाई फिल्मी दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा कर लाते हैं, तो वो भी श्रद्धांजलि स्वरूप उनके बारे में काफी कुछ बताएंगे। एंड ही इज नेक्स्ट ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो।
2: नेक्स्ट गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रांबट ऑन लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स।
0: और भाई भाइयों, रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ। हमारी आपकी मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब डे। बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा।

0: आज थोड़े दुखद समाचार हैं, क्योंकि जिनकी आवाज अभी आप सुन रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुमन कल्याणपुर का देहांत हो गया कल संडे एट 8 PM। उनके लोखंडवाला अंधेरी में उनका जो अपार्टमेंट है वहां पे क्रियाकरण आज सुबह 7 से 8:30 बजे तक विले पार्ले पवन हंस क्रेमेटोरियम में था। सुमन कल्याणपुर के बारे में उनकी डॉटर, उनकी बेटी चारुल ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट द क्रेमेशन। डिमाइस वॉज एट 8 PM संडे 31 मई ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेसेस। लाइका गोल्ड एक्सटेंड्स आवर हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू द बिरीव्ड फैमिली एंड वी प्रे के इनकी आत्मा को सदगति प्राप्त हो। ओम शांति। द वर्सटाइल एमिनेंट प्लेबैक सिंगर पद्म भूषण मिसेस सुमन कल्याणपुर इज नो मोर। शी हैड अ वॉइस वेरी सिमिलर टू लता मंगेशकर्स। और मैं बहुत ही सालों तक यही समझता रहा था कि इनके गाने जो इन्होंने गाए थे, मैं समझता था लता मंगेशकर जी की आवाज़ है। जब रेडियो पे काम करना शुरू किया तब से कुछ जानकारी हुई और पता चला आवाज है एक ऐसी मतलब आवाज जो लता मंगेशकर जी से ही नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी भी दिखाई। इन्होंने फास्ट गाने हो, स्लो गाने हो, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, गजल, डिवोशनल गाने और कितनी जबानों में इन्होंने गाए। शी वॉज बॉर्न ऑन 20th of January 1937 ढाका में, विच इज नाउ इन बांग्लादेश, एंड शी पास्ड अवे यस्टरडे 31st of May 2026 एट द एज ऑफ 89। अ ग्रेट इनिंग्स। शी वॉज एक्टिव फॉर 34 years, 1954 से 1988 तक। शी वॉज बॉर्न एज सुमन हेमाडी and she also started singing with that same name, Suman Hemadi, before marriage. And her younger sister, Shyama Hemadi. Later on, she became Shyama Chittar. Now, Suman Kalyanpur, inko Padma Vibhushan diya gaya by the government of India. And she made an entry with one song, Ghir Aaye Re कारे बद्रा, रोशन जी का संगीत और प्रेम धवन की लिरिक्स थी। 1954 की फिल्म थी मंगू। शेख मुख्तार जी ने इनको कहीं पे सुना था और उन्होंने उनको बुलाकर मंगू फिल्म में गाने गवाए थे। आगे जाते हुए हम बहुत बातें करेंगे अबाउट सुमन कल्याणपुर, सुमन हेमाडी, इनके हस्बैंड रामानंद कल्याणपुर, इसलिए उनका नाम सुमन कल्याणपुर रहा। अ वेरी पॉपुलर सिंगर इन द 1960s and 1970s। रफ़ी साहब के साथ तो इतने सारे गाने गाए। जब रफ़ी साहब और लता जी की अनबन हुई थी, उन दौरान सारे गाने सुमन कल्याणपुर जी को मिले थे। A total of 857 Hindi songs to her credit. 140 duets Rafi saab ke saath. Matlab ke it's debatable. 740 filmi gaane and then non-filmi gaane kul milakar 857 songs. Her father, you know, Shankar Rao Hemadi, served on a top post in Central Bank of India and was posted to Dhaka for a very long period. Inki Mataji Sita Hemadi five daughters and one son, Suman being the eldest. पांच बेटियां थी और एक बेटा, जिसमें से सुमन कल्याणपुर, सुमन हेमाड़ी बीइंग द एल्डेस्ट। छह साल की उम्र में 1943 में हर फैमिली मूव टू बॉम्बे, वेयर शी रिसीव्ड हर क्लासिकल ट्रेनिंग। शी वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स फॉर फर्दर स्टडीज इन पेंटिंग उन्होंने ज्वाइन की थी। शी स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल वोकल and training Lithi from Pune's Prabhat Films, music director and close film friend, a Pandit Keshav Rao Bhole. It was then only a hobby, but gradually her interest increased and she started learning professionally from Ustad Khan Abdul Rahman Khan and Guruji Master Navrang. पहली बार इन्होंने गाना गाया था ऑल इंडिया रेडियो पे 1952 में, उम्र थी 15 साल की। एंड हर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन 1953, 16 साल की जब थी, शी गॉट अ चांस टू सिंग फॉर मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी, एंड शेख मुख्तार वाज मेकिंग इस फिल्म मंगू, जहां से इन्होंने शुरुआत की। बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन पहले कहूँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ टू आवर वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल लेडी, यस सब्बरवाल, हमारी सरिता सब्बरवाल जी, जिन्होंने इतनी बेहतरीन अदा से निभाया जब मैं गया था। तो आज मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उनको जाना पड़ा और मुझे वापस आना पड़ा। सो सॉरी to all those who were enjoying Sarita Sabharwal ji. मैंने काफ़ी तारीफ़ें भी सुनी, मैंने आकर प्रोग्राम भी सुने थे, परदेश गया वापस आया काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन वो बातें कभी और सही। आज का विषय है सुमन कल्याणपुर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.45 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
3: हमजा समोसास 3 for 10,
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
3: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
3: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54U
3: While stocks last.
5: Tumhein dil lagi.
6: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
7: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
6: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
7: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
6: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
7: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
6: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
6: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
5: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milayen 0208 39 0880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
4: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
5: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

फिल्म नसीब में डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर. वी आर डूइंग अ डेडिकेशन ऑन सुमन कल्याणपुर ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट, आपकी

0: नेक्स्ट आवर में मैं आपको ले चलूंगा वही सफर पे जहां इन्होंने एंट्री ली थी बॉलीवुड में, और कैसा है, कैसे कैसे अच्छे अच्छे गाने गाए थे। नेक्स्ट गाना रमा जी आपके लिए।
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।
0: शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म है जहां प्यार मिले। सुमन कल्याणपुर जी ने क्या गाया, चले जा जहां प्यार मिले। चले जा तीन बार है मुझे लगता है। सुमन कल्याणपुर पास्ड अवे यस्टरडे एट द एज ऑफ 89 इन मुंबई। ओम शांति।

0: अब क्या कहूं मैं, एक आवाज और आवाज चली गई। आशा जी के जाने के बाद कुछ खाली सा महसूस हो रहा था इंडस्ट्री में, और ये एक और बुलंद आवाज वो भी हमें छोड़कर चली गई। शी वॉज सच ए वंडरफुल लेडी, एज गुड एज हर वॉइस। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर जी वॉज बोर्न ऑन 28th January 1937 and passed away yesterday, Sunday, 31st May 2026 in Mumbai at 8 p.m. She was born in Bangladesh, that is Dhaka. Active for 34 years. और इन्होंने गाने गाए तकरीबन 857 गाने. Yes. And I can only give you a little bit of touch of how she got into the industry. When Sheikh Mukhtar heard Suman Kalyanpur's voice singing in a Marathi film, which was Shakrachi Chandni, 1953 ki film. Suman tab 16 saal ki thi, and he was, that is Sheikh Mukhtar was so impressed, hence he got her to sing three songs for his film Mangu. And music director was Muhammad Shafi. However, due to unknown reasons, later O.P. Nayyar replaced Muhammad Shafi, and only one of the three songs, a lullaby, which was Koi Pukare Dheere Se Tujhe, was retained in the film. Wo gaane jo Hemadi, yani ke Suman Kalyanpur ne gaye the. लेकिन एक ही ललेबाई वॉज रिटेन इन द फिल्म मंगू 1954 की, हर एंट्री इनटू हिंदी सिनेमा। आफ्टर मंगू सुमन सैंग फाइव सॉन्ग्स फॉर नौशाद जी इन फिल्म दरवाजा 1954। बाय द वे दिस फिल्म दरवाजा रिलीज्ड फर्स्ट, सो फर्स्ट सॉन्ग ड्यूएट विद तलत दरवाजा फिल्म में। And then in the same year, 1954, Suman sang for the first time and the last time for O.P. Nayyar. And wo ek gana tha, song was Mohabbat Kar Lo Ji Bhar Lo Aji Kisne Roka Hai, and for film Aar Paar. And there were just two solo lines, more like a chorus singer. The only song she ever sang for O.P. Nayyar. And that was Suman Kalyanpur's entry into Bollywood, I would say. Uske baad to jab Naushad ji ke saath gaya, uske baad Darwaza film mein, which was released before Mangu, and she started singing for Baat Ek Raat Ki. क्या गाना है ना तुम हमें जानो, जो हेमंत दा ने गाया था उन्होंने भी गाया, लेकिन ये गाना कल हमारे रेडियो पे बज चुका है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर सकता। दिल एक मंदिर, उसका जो फीमेल वर्जन है, दिल एक मंदिर है टाइटल सॉन्ग। दिल ही तो है राज कपूर की फिल्म, जहानारा, सांझ और सवेरा, नूर जहां, साथी, पाकीज़ा। साथी वॉज नौशाद का संगीत, एंड पाकीज़ा शी सैंग द मोस्ट फॉर शंकर जयकिशन एंड रोशन, टाइमलेस जेम्स ऑफ मराठी फिल्म्स। एंड शी सैंग विद लता मंगेशकर, कभी आज कभी कल कभी परसों, फॉर म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार। एंड द क्लासिकल हिट्स में मनमोहन मन में हो तुम ही, कैसे कहूं फिल्म में, विश्वजीत की फिल्म 1964 में, मेरे संग गा गुनगुना जानवर फिल्म का गाना जो आपने सुना, एंड गिर गई रे मुरे माथे की बिंदिया पाकीज़ा का गाना, विच इज गुलाम मोहम्मद का म्यूजिक था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए। मैंने कहीं पे तो नोट किया हुआ है कि कौन से म्यूजिक डायरेक्टर के लिए कितने गाने गाए थे, लेकिन ढूंढ ढूंढ के थक गया। इतनी सारी नोट्स होती है, उसमें से कभी कभी भूल भी जाता हूँ मैं कौन सा गाना कहाँ, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ज़्यादातर गाने उनके सुनाऊँ। और उनके बारे में बताऊं। अगर मुझे पता चल गया कि कितने गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओपी नैयर और ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन जी के लिए गाए थे, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। एंड शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर 1975 फिल्म फेयर अवॉर्ड, विच वॉज कौन सा था, बहना ने भाई की कलाई में रेशम की डोरी, वो गाना लिखा था हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक जो आज है, उन्होंने लिखा था। तो वो गाना मैं थर्ड आवर में आपको सुनाऊंगा, इंदिवर जी ने लिखा था वो गाना, सो वही गाना मैं आपको सुनाऊंगा। सुनते रहिएगा, लुत्फ उठाते रहिएगा और याद कीजिएगा द ग्रेट लेडी सुमन कल्याणपुर, हु इज नो मोर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you 127.45. I shall verify that rate. 127.45 Indian rupees. Now send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
0: Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favorite presenters live. Get the tune-in details at laikagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: नौशाद का संगीत और खुमार पारंकवी ने लिरिक्स लिखी। ये गाना फिल्म साज और आवाज का था, 1966 की फिल्म, उसके पहले आप सबका फेवरेट, ये दुनिया के बदलते रिश्ते। थैंक्स फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस, अप्रिशिएटिंग द ट्रिब्यूट दैट आई डिड। मैं सुबह 4 बजे तक ढूंढता रहा, 3 घंटे के गाने, मतलब कंपाइल करना इजी नहीं था, कौन सा गाना पहले डालूं, कौन सा बाद में, और 3 घंटे का शो करना, इट्स वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क, पर सारी डिटेल्स भी लेनी पड़ती है। सो लेकिन आपके मैसेजेस जब मैं पढ़ता हूँ, आई फील इट वॉज वर्थ माई एफर्ट्स। एंड इतने दूर दूर से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। हमारे रमेश रमली जी, मेरा दोस्त, हु इज़ सेलिब्रेटिंग मडाराका डे इन केनिया, एंड ही इज़ विशिंग एवरीबडी एट लाइका टीम एंड द ग्रीटिंग्स फ्रॉम विजय, उषा, कैलाश, अरुणा, एंड दे आर ऑल प्लेइंग कार्ड्स टुडे बिकॉज ऑफ द हॉलीडे। एंड एक गाना ज़रूर इनके लिए मैं पेश करूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू जिन्होंने सुमन कल्याणपुर के लिए प्रे किया, उनकी सद्गति को, उनकी जो आत्मा है उसको सद्गति प्राप्त हो। एंड ऑल आई कैन से इज ओम शांति फॉर सुमन कल्याणपुर। आगे जाते हुए हम एक गाना ऐसा पेश करेंगे जो बहुत खूबसूरत गाना है, इन्होंने गाया था, एंड द लिरिक्स वर बाई नन अदर देन इंदिवर जी। इंदिवर जी, आई वुड से ही गॉट रिकग्निशन फ्रॉम अ फिल्म इन 1951, जो मल्हार फिल्म का गाना था। ओवर 1600 प्लस सॉन्ग्स इन 300 प्लस फिल्म्स इंदिवर जी ने लिखे थे इन 4 decades। एंड उनका असली नाम श्याम लाल बाबू राय, जी हाँ, बॉर्न ऑन 1st of January 1924 एंड passed away sadly on 27th February 1997 after his 73rd birthday. इंदिवर जी, उनके गाने आप सुनेंगे थ्रू आउट द वीक, लेकिन आज का गाना मैंने चूज किया है जो उन्होंने लिखा था सुमन कल्याणपुर जी के लिए। फिल्म है रेशम की डोरी, संगीत शंकर जयकिशन का, और इंदिवर जी ने लिरिक्स लिखी थी। वो नेक्स्ट गाना होगा, विच इज बहना ने भाई की कलाई। So thank you for all your messages and let's carry on the tribute.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.45 Indian rupees. You send money to India via SBI Yono app or branch before end of June, and you will be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Laika Radio.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963. 5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: But how? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-633 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा

0: What an iconic song. She will always be in our hearts for giving us such wonderful songs with her voice. Next song is my favorite. Film hai Bachpan. Suman Kalyanpur aur Rafi Sahar.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: ये गाना जो है ये मेरा फेवरेट है क्योंकि सरदार मलिक ने कंपोज किया था, सुमन कल्याणपुर जी को गवाया था इन्होंने रफ़ी साहब के साथ. फिल्म थी बचपन, 1963 की फिल्म. तेरे हम हो सनम, इतना प्यारा गाना है और इतने प्यारी अदा से उन्होंने गाया भी. लोग आज तक ये समझते रहे कि ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ है, लेकिन आज मैंने 3 घंटे का ट्रिब्यूट करके सबको अवेयर कर दिया कि ये सब गाने जो आप सोचते थे लता जी ने गाए थे, वो एक्चुअली सुमन कल्याणपुर जी ने गाए थे. सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक. एंड आगे जाते हुए 2-4 और भी गाने होंगे जिससे हम उनको गुड बाय करेंगे.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: This is for Ramli and gang all the way in Nairobi. And a Dr. Ismail who is in Mombasa with his friends.

पढ़ती है वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ने दीवार है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner,
2: Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी ना, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803EE392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से।
6: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
7: Presented by South Hall Travel, powered by Tata Tea Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
8: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड मेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
9: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
10: Hey, this is Radio Ali from the Radio Ali Rollercoaster. Catch my show every Monday to Friday evenings from 7 to 10 PM. Make sure you make it a date, 7 o'clock on the Radio Ali Rollercoaster. Mucho pyar.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

0: है लाइका रेडियो टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: Punjab the biggest tunes non-stop.

0: Mocha Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
0: The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.